एक्स का एफ एम कवा एल्फ ए कम आखिर मिनट है कि माँ जो है खमग बुंगा कि इविजी से के कमीशन ओले किया को कमंग आधे जिके मेट गन कुन आधे जिके क्वीन आधे जिके मूल चुन हमकां ए उन्तन कुछ आउंग बोला हम जिचा हमको ऐसा कभी से कं कों का के राधु ता कुछ देख कवा बोला ना इको एम चोंग बा अकों मारे का वा दी Season 2 of Tengu Chua ke Uni 2 Season Season 2 na khada sa uzi che ka ke radhu ke ma jo e kamu ko bunga ke mtu tu kwe aung nga wole ngima ta asa uzi che ka ke radhu ako si da ke mtu tu kwe aung nga wole ngawa ngu e sa ka uzi ka kong ka ke radhu ke ma jo e kamu ko bunga ko si da ke kawa wole ngai ko kawa ngai wole ngu chu ngawa ke kawa Uni da kan uzi pa ngawa wole ngu zi chang ka ku chale kamu kwe वो अच्छी गेम तन छोंग वो लंग वा हम कोई सा कवि सी का कौन का के रात हो मसे डे मैं कुम्भ छोंग वो लखे ने खा अच्छी चीज कोई तन छोंग वा ता ऐसा कवि सी से क्या कौन का या के रात हो कोई अलग वा प्रोग्राम वा नम तो तू कोई उंगा का वो लंग वा हम कोई सा कवि सी के माचो है कम के बुंगा के तो तू कोई उंगा वो लंग हिमा हम कोई सा कवि सी का कौन का के रात हो अगर सी डे कवा वो लंग को नहीं ते कवा या तो कई सी पंगा बा कोई कई तो रात हो के नुमरु या होने तें सेवा पे नेखा एफएम मालूम तो कोई आउं वाले नवा हम कोई सा कवि सी का कौन का के वाले नहीं कोई मतलब जो नवा कौन कहने को सुबह के फियर तक हमने ते के माचो है कम को बुंगा के आज जो है या सिक्का मंगवाई को लेंगे माँ वो जेटमन स्टाइल और मैनुअल अतिव के कुन्दो को सिया हुआ 12 फेरी